आदरणीय तारांगा, एक काल एक्टिव ना लगेन महितिया, एक ने कावा नित्रा मोने गहना, एक काल अज्ञात न दनु नाने भी, एक महापुत्र में आक, आहेतु के वा अपिटे वन वन निसित होना, अधिता दन्ने ना मुखा धारिये टम हेतु गियला, एक इदाइन पासे, बांगी तो सदाट मामते के करना गियला, एक ऐसी तिविल लट वैडी आमक सिद्ध होना मटे आव का वधावत तमत के करण मेरो गया मामे चमत का ऐ अनिसा आगे वैडी होना तमाई ओ

ये हम आ गए हैं कहा अभी मैं कहते द आवे आदरणीय थरंगा आसाई पलवाई खुच्चर दुरिंग तिबुनात आसाई पलवाई अतरे हरे फुदुम आदर आगते ना आगे नेद पलवा वेरे न कुटा हसिंग वातुर देना आहसट वातुर ओने वेन कुटा पलवेन वातुर देना दुरिंग तिया न कुटा आदरे देने ना वैडी तमाई निर्नामिकाई

आदरणीय तरंग के सुभमंदारम रेवा खाले तिबुना मठत दुरी सम आदर वैटी दवास मम ही तो दुरी अगे वैडी के नया तरंग आदर वैडी वेन्न वेन्न या दुर गया दमगे हिते आदर तेन्ने हेमदाम दुरी माधिपोली तरंग हर्ष।